श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं चौगुजराती कार्यक्रम गीत माला 102.8 एफएम पर या तो www.diversefm.com पर। समय पण जातो जाय छे, बे गीतो बाकी छे, तो पूरी कोशिश करिए त्यां सुधी आनंद करो।